0: ओके जी, सुबह बहेर नु सुबह बहेर और वाई ची गुड मॉर्निंग नु गुड मॉर्निंग और गिलमन वजीरा फ्राम जुनूबी वजीरिस्तान वाना कड़ी कोड बाजार हसाम भाई सहर पखेर सहर पखेर रागले प उगी नास औ पनहरा दी की हिस्सा शक निश्ता दीर ज्यादा मनन शुक्रिया गिलमने यू जी हान मने देखो एज ना जिंदाबाद येरा लाला जी दास्ता कट वाइस वाओ चिचर तनिश्री द नजरा गोरखना वरीशा वफामल जनत यूदरसरा थैंक यू सो मच आवाज डीर कटिंग की लिक कटिंग अगर श्रीवास्ता अब्दुल हादी मक व गमून दबल चा बश जाना ना मासर चिगर जिनु जमा बश जाना डीर जाता मनना शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम के तहर के लिए स्टडी मशी पखेराली वाई मा
1: भाई
0: अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक हम जमाखूर संग आओ कम जी ना सर खबर ही बिल्कुल जी वाख ले नूर रासरा खबर की सवाबे ना अच्छा नूर हर कले स्टडी मशी नूर बस तासु ना खुजमंग प्रोग्राम खत्म शिवे तासु बखापा मिये का ना
1: भाई तासु रे दिल दे प्रोग्राम ने नाराज
0: दया बस दा जमंग द गटू खल को पैसली दी जी जमंग द सीओ से अगी दा पैसला चुन की कड़ी बस सवाबे वाने प्रोग्राम खत्म को न जी दादे जमुग प्रोग्राम शुरू दे बहरहाल सासु कॉल ड्रॉप शुता सुबिया जमुग ने तपूस कोलिशी पुख्तन कोलिशी

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: Get ready to go.

0: वेलकम बैक, वेलकम प्रोग्राम खबर है संदरे दे विच प्रोग्राम शुरू भी है। तुस हिस्सा गिन सकते वे साडे प्रोग्राम विच, अपनी फरमाइश दस सकते वे दोस्तानो। तासुम काल कवल है 09635114888 बांदे काल काल रवांदा दा ओ गुरु जी चोक दा दमा खोश बरोर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, आवाज आंदी पई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो
1: जी, मैं तुदा करना प्रेका फिदा मरवतला
0: जी।
1: फिदा मरवतला गाना,
0: फिदा मरवत
1: बंदा ने ओकला से पकरा शो।
0: फिदा मरवत गाना सॉन्ग गदा सिंगर नाम दा गाने गाना चरंगा दा
1: करन
0: खान वाला बता फरमाइश बांधे बाबा लगू। बिल्कुल वशो चाहता दुआ सलाम वर कहे बस। ओके जी, करन खान की फरमाइश की तीस एक पहले कनी गुरा में जो नूर मोहम्मद ने नूर मोहम्मदा जार दे सकनी गुरम ना दे काल कड़ाओ ओ गाना फरमाइश देवा शवलो लक पश्तो खुजम सम नसम वेला यम सराय की हो कोशिश कऊ चे तास सरद पश्तो वजगो के देसी दे पश्तो अजदक नूर मोहम्मद ता फरमाइश पूरा कीज लगिया दा रजा से दा गाडा वारो नूर मोहम्मद फरमाइश कनी गुरम ना।

0: प्रोग्राम फरमैशी प्रोग्राम 09635114488 कॉल आंदी पे देखन मैडम मीठा भिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शायद कॉल कट गई दोस्तों, मायूस नहीं होना, वक्त दोबारा क्वेश्चन कॉल आंदी पे देखन केरा मैडम मीठा भिरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अलैकुम
0: जनाब। जनाब मैडा मीठा मैडा सोना कौन ही वे जी?
1: आदम खान शेख रमेवाल।
0: आदम खान शेख रमेवाल, आदम खान अता तो प्रोग्राम से हर कला वाय मा
1: से जोड़े
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तशे तबियत दे शदा वक्त साथ जिंदगी दे शदा
1: खैर ने अल्लाह पागल ले माफ रे वा जिद गई।
0: जी जी बिल्कुल जी,
1: यूं शरीफ खान दे रसरा है
0: रसूल बादशाह टपे आजा चौक चौक दी ब्यारा था नाम वशवा
1: तमा सलाम आई सत्रा कुरेशी ता मंसूर अजीता
0: जी
1: सतुला दिल खोश ता
0: जी जी
1: ठीक सा ठीक
0: सा खबर आवा
1: ता ते देर जे सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, खुश रहवे आबाद उसे खुदा दे आबाद का खुदा दे खुशहाल का बिल्कुल ता फरमैश ब पूरा कहूँ। आओ मेरे दोस्तों एक पहले जेरी फरमैश आई जबरदस्त गाने दी फरमैश थी ऊकू सुनने वत इंदा रसूल बादशाह दे टपे होसेन रसूल बादशाह दे टपे फरमैश पूरी करे सूँ। एक पहले फरमैश खुश नसीब फिल्म दा कोई गा मोहम्मद इलियास कुतुब कलोनी चू फरमैश की थी आई खुश नसीब दी खुश नसीब। आओ मोहम्मद इलियास आओ रल के सुनने

0: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: ओ जमा

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 जहां की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dehan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. आप तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज। ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है खूबसूरती की। जनाब सुपहर की 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही जनाब आपको आपके अपने शहर के स्टूडियो को, आपको अपने शहर के रेडियो के ऊपर ये आवाज सुनाई देती है। ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है कि जिसे कहते हैं केसन टी टाइम शो। जी जनाब 4 बजे के वक्त ये वो वक्त है जनाब की जिस वक्त चाय को नोश किया जाता है, चाय को पी कर जनाब एक दफा फिर से तरोताजा हुआ जाता है, फिर से आपको खुद को एनर्जेटिक किया जाता है और दिन भर के जो बकिया काम होते हैं उनको इख्तिताम पसीर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जनाब तीनों शहरों टांक, डेर इस्माइल खान और पहाड़पुर के लोग भी अगेन जनाब अपनी नींद पूरी करके, अपनी थकावट खत्म करके, चाय के एक कप के साथ अपने बच्चे कुछ दिन का आगाज करने वाले होंगे और दिन के बचे हुए कामों को इख्तिताम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपके दिन के इख्तितामी लम्हों के अंदर ही हमारा प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं केसन का टी टाइम शो, जो कि आप बयक वक्त तीन रेडियो स्टेशन टांक, डेरा और पहाड़पुर से एक साथ सुनते हैं। आप सभी लोगों का तीनों शहरों टांक, पहाड़पुर और डेर इस्माइल खान में बसने वाले तमाम हमारे यूजर, हमारे लिसनर्स, हमारे फैंस का बेहद शुक्रिया जो केसन के ऊपर एतमाद करते हैं, केसन से मोहब्बत करते हैं और केसन को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं।

जी समय के नाम मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान और आप लोगों के साथ में मौजूद रहता हूँ पूरा एक घंटा यानी कि अब से लेकर ठीक 5 बजे तक एक घंटा। और इसमें ढेर सारी बातें जो पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपके साथ करनी होती हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपकी बारी होती है SMS के थ्रू या फिर आप कॉल्स के थ्रू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को के बारे में जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फीडबैक जो होता है उनके रिव्यूज हमारे सामने रखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, हमारे लिए इनक्रेजिंग होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद आप सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं हमारे प्रोग्राम में बजरिया SMS या फिर बजरिया कॉल्स के। तो आप SMS करने के लिए या फिर कॉल्स के लिए हमारा नंबर नोट कीजिएगा, हमारा नंबर जो है जनाब 03449363366 यानी कि 03449363366। जनाब ढेर सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हम बना चुके हैं केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को मिलती हैं और हमारा ये दावा है कि जब आप हमारी कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो अगली प्रोडक्ट आपका दिल खुद करता है कि आप कोई और वेरिएंट भी खरीदें। जैसे कि अगर आप हमारा ऑयल खरीदते हैं जिसे हम कहते हैं केसन हेयर ऑयल, तो जहरी बात है कि उसके बाद जो है आपको शैम्पू की तलाश होती है और आप शैम्पू खरीदना चाहते हैं तो जनाब ऑयल के बाद शैम्पू ज़रूरी होता है। आप केसन का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का शैम्पू है जिसे बेतहाशा लोग पसंद करते हैं, तो आप भी ऑयल के इस्तेमाल के साथ शैम्पू इस्तेमाल किया कीजिए। और इसके साथ साथ जब आप अपनी वाइटनिंग का सोचते हैं तो भाई केसन वो कंपनी है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है वाइटनिंग के हवाले से, चाहे आप वाइटनिंग लाना चाहते हैं अपने चेहरे के ऊपर क्रीम्स की सूरत में, आप वाइटनिंग लाना चाहते हैं सोप्स की सूरत में, या फिर आप अपने चेहरे के ऊपर वाइटनिंग लाना चाहते हैं जो है फेस वॉश की सूरत में, तो ये तीन बड़े जो है टूल्स जो यूज करते हैं हम आप वाइटनिंग के लिए। आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जिसमें आपको तीन तरह की वाइटनिंग की क्रीमें मिलती हैं, आपको तकरीबन 7 किस्म के हमारे वाइटनिंग सोप मिलते हैं और हमारे तकरीबन आपको 5 किस्म के वाइटनिंग के फेस वॉश मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी और एक बहुत बड़ी रेंज के साथ वैरायटी के साथ आपके शहर टांक पहाड़पुर और डेरसमिल खान में मौजूद है। और आप वाइटनिंग के अगर शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा वाइट एंड ब्राइट रहे तो आपको केसन की तरफ रुख करना पड़ेगा और आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं कि आप इन ऑप्शन में से किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

जी जनाब, टॉपिक आजकल आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं, और आज भी टॉपिक है जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया, लेकिन चलो जी अभी बता देते हैं आपको, इतना कोई टाइम नहीं हुआ। तो जनाब टॉपिक देखें, सामीन कराब, आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि अक्सर आप एक बात सुनते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। अक्सर लोगों को आप कहते रहे होते हैं, अक्सर मसाजिद के अंदर आइमा कराम भी कह रहे होते हैं कि भाई फलां बंदे के लिए दुआ करें, फलां बंदे के लिए दुआ करें, फलां बंदे के लिए दुआ करें। लेकिन कहते हैं कि जनाब खुशकिस्मत इंसान वो है जो बगैर कहे लोगों की दुआओं में रहे, ठीक है जनाब। आपको अपने लिए दुआ करवाने के लिए किसी को कहना मत पड़े कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बीमार हूं, मेरे हालात ठीक नहीं है, ठीक है जनाब। कहते हैं कि खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी जुबान से कहे बगैर लोगों की दुआओं का हिस्सा हो। यानी कि आप आपके सामने जब लोग बैठे होते हैं तो आपकी तारीफें जाहिर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन असल खुशकिस्मती ये है कि आपके बैक में, आपके कमर के पीछे आप मौजूद ना हो और लोग आपको दुआएं दे रहे हो, आपको याद कर रहे हो। एक तो ये बंदा होता है जो बहुत खुश नसीब होता है, बहुत खुशकिस्मत होता है, इसके पीछे उसकी बहुत सारे एफर्ट्स होती हैं, उसका अपना रवैया होता है, उसका अपना इखलाक होता है, उसका सखीपन होता है, उसके मीठे बोल होते हैं, उसका इखलाक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी की दुआओं में आ जाते हैं, ठीक है जनाब, आपका मदद करना होता है, आपका किसी के दुख को अपना दुख समझना होता है, मुश्किल वक्त में किसी के साथ देना होता है। लेकिन आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपके नजदीक किस्मत वाला बंदा कौन है?

0: जो तो जनाब व्हाइटनिंग के लिए आप लोगों के पास हमारी बेताश आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम भी हो गया है और मैंने तीन तीन चार बंदों की कॉल जो है ड्रॉप की है, सो उसके लिए माजरत, लेकिन आपको टाइम बताया हुआ है कि 4:30 बजे के बाद आप लोग कॉल और SMS किया करें ताकि हम जो यहाँ पर बैठते हैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि हम भी अपनी बात पूरी कर सकें। तो भाई केसन के पास आप वाइटनिंग के शौकीन हैं या फिर आप अपने स्किन की क्लैरिटी के हवाले से परेशान हैं, तो हमने आप लोगों को दो फार्मूले दिए हुए हैं। एक बिल्कुल लेटेस्ट दौर का है जैसे जिसे हम कहते हैं ग्लूटावाइट, ठीक है जनाब। केसन ग्लूटावाइट के अंदर कंप्लीट रेंज हम आपको प्रोवाइड करते हैं और केसन वाहिद कंपनी है कि जिसमें आपको ग्लूटा में कंप्लीट रेंज मिलती है, यानी कि क्रीम भी है हमारी, साथ में साबुन भी है और साथ में हमारा फेस वॉश भी है। तो जो लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं वो हमारा साबुन ग्लूटावाइट के खरीद सकते हैं, जो फेस वॉश के शौकीन है वो केसन ग्लूटावाइट फेस वॉश और साथ में केसन ग्लूटावाइट की क्रीम भी मौजूद है। तो जनाब एक कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ और उनको हम मौका दे रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी सखी सुल्तान को सखी मरदान को हाल है सेठ चंगे वे तुसा प्रोग्राम सुन दे बैठे हुए। मौसम की में तुम्हारे पास गर्मी है सही?
1: नहीं गर्मी तो कोई चार्ज मौसम हुआ मजेदार बना दे।
0: अच्छा बारिश के बाद मौसम चंगा ठीक है यानी के
1: बना गया के वो
0: आवाज तुम्हारी ब्रेक थी नहीं पे ये कर दी पई जरा जहाज चेंज करो। अच्छा अच्छा जी शिफा दर्द की गल करें पे दर्द वाले तेल ली तो अरे बंदे ने गिदी बात क्या था तुम्हारा बंदा पैसे जाया तो नहीं थी क्या उन्दे? अच्छा जी
1: माशाल्लाह।
0: अच्छा चलो ठीक है जी बहुत मेहरबानी तुसा सारा प्रोग्राम सुने तुहारे कह रिश्तेदार को दर्द तकलीफ है तुसा को शिफा दर्द बारे दसा केसन दे शिफा दर्द बारे ते वो बंदा बहुत चंगा थे कि सारे वास्ते भी ए एजाज दी गल हुंदी है जेले कोई सारा कोई बंदा प्रोडक्ट गिने ते वो शिफा याब थी बने। हेलो जी जी बहुत शुक्रिया। आज तुहारी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक थी नहीं पी शायद नेटवर्क दे इशू है जिन्हें आवाज बहुत घट आंदी पी। एनी हो वो कह रहे थे कि जनाब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमने एक बंदे को जिसको जोड़ों के दर्द का या कोई भी मसला होगा दर्द का बेसिकली जोड़ों का दर्द कमर का दर्द होता है ज्यादातर लोगों को पट्ठों का दर्द होता है तो उसमें बहुत कामयाब है हमारा शिफा दर्द आयल क्योंकि ये शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किया गया तेल है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ नाम बताएंगे अपना? जी
2: हिम्मत से बात कर रहे
0: हैं। हिम्मत से बात कर रही है हमारी बहन क्या हाल है ठीक है आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कौन सा FM सुन रही हैं? पहाड़पुर सुन रही हैं या डेरा 91 सुन रही हैं? थोड़ा सा जोर से बोलेंगी तो आपकी आवाज हम तक सही पहुंचेगी। मैंने क्या थोड़ा सा जोर से बोलेंगी तो आपकी आवाज कम पहुंच रही है हम तक बहुत ज्यादा। आपकी आवाज मैं तो लाउडली बोल रहा हूँ ना मैं तो चाय पी के बैठा हूँ शायद आपने अभी तक चाय नहीं पी है। मैंने क्या चाय शायद आपने नहीं पी है इसलिए आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ अभी आ रही है। क्या कह रही थी आप?
2: भाई मैंने कहा हम आपके कस्टमर है वसीम भाई से आपका सामान बहुत शार्ट होता है हम वहाँ से देते हैं और हिम्मत में कोई हमारे पास नहीं होता उसको और वहाँ से कितनी मिलता है वसीम भाई के पास जाते हैं हम।
0: अच्छा तो वसीम के पास सामान नहीं मिलता हमारा शार्ट होता है?
2: भाई हम जाते हैं परसों गए थे उधर ना ही फेस वॉश था ना ही वो हाथ में सिरप था ना और कुछ था।
0: अच्छा
2: उनके पास शैम्पू ही नहीं मिला है और बड़ा ऑयल भी नहीं मिल रहा।
0: बड़ा ऑयल भी वहाँ पर नहीं था। चलो ठीक है आप हमारी यूजर हैं तो मुतमईन होंगी आप हमारी कंपनी से।
2: भाई वसीम भाई कहते हैं कि बड़ा बंद हो गया है।
0: नहीं, कोई बंद नहीं हुआ, बड़ा ऑयल भी चल रहा है, छोटा ऑयल भी चल रहा है, तो जिसको जहाँ पर जिसकी जरूरत होती है वो खरीद रहा होता है। मैं बात कर लूंगा शो के,
2: नहीं सकते हमारी आसानी यही होते हैं वसीम भाई के, आसानी से दे सकते हैं और वहाँ पे तो शार्ट मिलता है हमें।
0: अच्छा चलो मैं आज वसीम से बात करूंगा कि क्यों चीजें शार्ट हैं उसके पास। आपके साथ अल जन्नत कुकार नहीं लगता, आपके साथ कुकार का इलाका दूर हो जाता है,
2: जी
0: जो कुकार का इलाका है वो दूर हो जाता है आपसे।
2: नहीं वो भी दूर हो जाता है।
0: अच्छा दूर हो जाता, चलो ठीक है, आपकी मैंने कंप्लेंट नोट कर ली है। मैं ये पूछ रहा था कि मुतमईन है ना केसन के प्रोडक्ट से,
2: हाँ भाई बहुत बहुत ज्यादा।
0: हर चीज आप हमारी केसन की लेते हैं, ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम वगैरह, ग्लूटा यूज किया आपने?
2: जी ग्लूटा क्रीम भी यूज करते हैं, फेस वॉश भी यूज करते हैं, शैम्पू ऑयल सब कुछ
0: सब चीज केसन की यूज करते हैं, यानी
2: बहुत
0: कि
2: ही ज्यादा
0: जी
2: छोड़ने को पूरी नहीं करते।
0: केसन तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक दफा यूज कर ले फिर उसे मेयार की भी पता चल जाता है, रिजल्ट का भी पता चल जाता है, तो शो चले ना चले वो प्रोडक्ट तो नहीं छोड़ सकता हमारा।
2: जी भाई हम तो बहुत ही
0: ठीक है जी
2: मतमईन
0: बहन, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं इंशाल्लाह आपकी कंप्लेंट के ऊपर फौरन अमल करवाता हूँ शो के बाद के क्यों वहां पर
2: है
0: शॉर्टेज।
2: हमको, आपको शो हम डेली सुनते हैं लेकिन कॉल नहीं कर पाते,
0: चलो बस ये भी
2: हम भी
0: काफी
2: याद
0: होता,
2: कर
0: ये
2: लेते हैं।
0: काफी होता है कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो कभी कभी कॉल कर दी भी क्या करें। ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। वसीम जनरल स्टोर है जो अब महमूद जनरल स्टोर के नाम पर चेंज हो गया है CRBC पर, बिल्कुल भी वहां पर हमारी बड़ी सेल है, और बहुत अच्छा बंदा है वो, माजिद नाम है उसका, और ये फर्स्ट टाइम मुझे उसकी कंप्लेंट मिली है। और वसीम जो है ना एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी उधार नहीं करती है, वसीम जनरल स्टोर वाले, इनका बिल्कुल भी कैश होता है और इनको शॉर्टेज तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन मैं आज इनसे पूछूंगा कि वाई दिस को लवेरी है जी, हमारे लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, जब कस्टमर हमारे मौजूद हैं तो चीजें, ऑयल बिल्कुल जनाब, छोटा ऑयल भी मौजूद है, बड़ा ऑयल भी मौजूद है, ठीक है, कोई बड़ा 750 रुपए का है, छोटा 430 रुपए का है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शैम्पू ऑयल ले सकते हैं। वाइटनिंग की हम बात कर रहे थे आज, और वाइटनिंग के हवाले से एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील खान, क्या हाल है? ठीक हो
0: चाचा फतेह खान, किवें हाल है चाचा? ठीक ठाक
1: बस चाचा, थोड़ा थोड़ा सुन का बेटा, पहाड़ को कोई रिक्शा का को नहीं, तो 91 तो को आता को नहीं,
0: क्यों नहीं आता 91? पहले तो 91 को ना मैं सुनते, तो सा
1: 91 तो सुन जाते, 91 का कोई पता नहीं, तो था को तुझे अंग्रेजी चैनल खा दो ना, आजकल से चला गए रेड वहां दे।
0: अच्छा जी,
1: ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਪਾਰ ਪੂਰੀ ਲੁਕਵਾਦੇ 96 ਲੁਕਵਾਦੇ ਤੇ ਜੱਕੇ ਲੁਕਵਾਦੇ ਤੋ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਕੋ ਆਇਆ ਕਈ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ
0: ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਰੂ ਵਾਲੇ ਆਵੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ,
1: ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰੂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ,
0: ਉਹ ਮੁੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਥੀ ਵੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਰੂਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਚਾਈਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੋ
1: بیجنگ
0: آن لگ ویسی انڈیا آن لگ ویسی سارے چینل لک ویسے سوارو تو تمہیں کو نہیں پتا لیکن نونے سیٹ دی کال ہونے آئی پی تھوڑی دیر پہلے
1: ٹھیک ہے
0: جناب، بہت شکریہ چاچا فتح خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور فیس بک لائیو کے اوپر بھی آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آج بہت دنوں بعد طلحہ کنگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ساتھ میں محمد حمزہ کیمٹا بھی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ جی، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ لوگ کال کر رہے ہیں ہمیں 0344-936-3366 کے اوپر، اور ایک اور ہیرا ہمارے ساتھ آ چکا ہے جی، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جناب،
0: تھینک یو، میں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے، میں آج تو کو ہیرا کہہ کے مخاطب کی تھی ہیرا،
1: کیا بات
0: ہے،
1: کیا بات ہے،
0: حاجی ہیرا وہ تو صاحب ہیرے کو لوتا
1: کوئی
0: اچھا، یہ وجہ کو دیکھو آر جے نے سلام بھیجے انہوں نے صحیح، بالکل چاچے فتح خان دی کال نا تہاڈے کول پہلے
1: قسمت
0: والا بندہ کیسن کو استعمال کر پتا اتنا خیال رکھے قسمت والے ٹھیک ہے سہی بہت مہربانی سہی شکریہ
1: اللہ خوش رکھے تمام دوستوں کو سلام
0: کیجیے تمام دوستوں سے سلام اور پنجاب میں ہمارا سیل پوائنٹ انہیں کے پاس ہے اور ان کے پاس جب جائیں گے تو آپ کو کیسن کے سارے پروڈکٹ ملیں گے کنڈا سادات کے ساتھ جو ہے پنجرائی کے اندر ہمارا یہ اسپاٹ ہے جہاں سے آپ کیسن کے سارے پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ صبح شو کے اندر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس شارٹیج چل رہی ہے تو یہ کل خود آئیں گے کیسن شاپ ڈیر اسمل خان میں اور وہاں سے پروڈکٹ حاصل کریں گے تو آپ پنجاب سائڈ کے اوپر جہاں پر پنجگرائی میں رہتے ہیں یا پھر آپ آس پاس دریا خان کے علاقوں میں تو آپ کیسن کو چاہتے ہیں اور کیسن کے پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور راجہ غفور کے پاس جائیں گے شاہ جہان ممبر شاہ جہان السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر خلیل خان کیا حال ہے
0: سنکی میں حال ہے چنگے بتے ہوئے ٹھیک ٹھاک
3: شکر ہے سر الحمدللہ
0: پروگرام سن دے پے ویسے
3: الحمدللہ شکر سن دے پے
0: راجہ غفور دی کال ہے تواڈی کال کو پہلے انہاں دے گالیاں سنے وے چاچا فتح خان دے وی سنے وے
3: جی جی بالکل سنیا سے
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے موسم کیویں تواڈے پاسے گرمی ہے یا تبدیل تھینا پے تھوڑا پہلے دسو
3: موسم اے بارے جی تھوڑی ہے نا ان دی وجہ کول تھوڑا تبدیل تے ہے نا
0: بارش خواتین گھروں دے وچ فارمولا کریم بنائیں دین تے او میڈیسن والے میڈیکل والے کریم وچ سٹ کے لوگاں دے چہرے نال کھد دے پین تے بیچارے ایسے لڑکیاں جنہاں دے شادیاں حال تک نہیں تھے ہوندے او وی استعمال کریں دین تے شادی کول پہلے او اپنا چہرہ خراب کر باندھ دین
3: تاں پر آواز چڑی جان لگے
0: میں کہ صحیح سٹارٹ وچ گل کیتی سی کہ جڑے فارمولا کریم بیوٹی پارلر وچ بڑھنے نا ٹھیک ہے صحیح اتنے جلدی ریزلٹ دی کوشش نہ کیتی کرو تہاڈے واسطے ہمیشہ واسطے او خرابی ہے ہمیشہ واسطے تہاڈا نقصان ہے ٹھیک ہے پروفیشنلی بالکل جی اوکے جناب آواز ختم ہو گئی ہے بالکل ان کی اور کون تھے ہمارے ساتھ ممبر شاہ جہان ہمارے ساتھ موجود ہے ہینا گول نور بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور ویلکم کہہ رہی ہیں ویلکم بیک کہہ رہی ہیں تھینک یو جی اینڈ ملک عصمت السلام علیکم ہلو ہلو ہلو صحیح آواز آنی پی ہے آگے جناب ان کی آواز نہیں پہنچتی مجھ تک اور اسلمت پہلوان جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی کال آئی ہوئی ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں 03449363366 کے اوپر اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ان بہنوں کے لیے جن کی عمر ابھی کم ہے یا وہ بڑی خواتین عمر کی اپنے لیے سیف کریم کا انتخاب کریں سیف فارمولے کا जो आपके स्किन को खराब ना करे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसन की क्रीमें। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जनाब? पहलवान असमत पहलवान सर नाल मौजूद, किवे हाल है? सही ठीक ठाक।
4: आवाज आ रही है
0: जी? हूं आवाज तो तेरी बिल्कुल साफ आंदी पे लगदे में कि दरख्त उत्ते चढ़ गए हूं, तो पहले बिल्कुल नहीं आंदी पे। मेरी आवाज नहीं आंदी हूं?
4: नहीं थोड़ी आ रही तो मेरी आंदी पे।
0: हां बिल्कुल सही आंदी पे तेरी आवाज। सही
4: अल्लाह हिदायत दे यार, इना टलना रला को भी वजह कोल बों
0: खुशकिस्मत है अज कल को बंद खुश नसीब त्रै त्रै साल मिले त्रै त्रै शादियां जिन्होंने त्रै त्रै निकाह है जी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जी में वदन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब दे चार निकाह इन माशाल्लाह ठीक है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब सारे डेरे दे उन्हां दे भी चार पांच निकाह इन, चार इन पांच नहीं, पांच तो थी नहीं सकते, चार इन मेरा ख्याल है। एक बीवी उन्हां दे फौत थी ते जनवरी को पांचवा थी गया, लेकिन ऑफिशियली जरे चार ही होंदे न। तो उन्हां को तुसा खुश नसीब बा देवे इना कोई तोरी नजर इक बह भी हिन
4: तकरीबन।
0: अच्छा तुसा देवे को दुनिया दे खुश नसीब लोग इन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੇ ਚਾਰ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣ
4: ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਏ।
0: ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਅਗਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਦੂਤਰੇ ਅਗਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਨੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਪ। ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਹਿ ਵੈਸੋ ਅਸਮਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
4: ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਖਲੀਲ ਵੀ ਬਸ ਦੀ ਗੁੜੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
0: ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨਾਂ ਰਸ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
4: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਕੰਨ ਲੇਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੋ ਨੇ
0: ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਵੰਜੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ।
4: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨਾ ਲੇਟ ਯਾਰ ਕੋ ਨਾ ਲੇਟ।
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: چار بوتل لاجواب شمپو
0: ہر پروڈکٹ بالکل کوئی بھی کتھوں بھی کمپلینٹ کر سکتے، نمبر اسا آن کرے نے، کوئی اسا مرضی دے کالاں تے نہیں چاہندے، ہر کوئی کال کر سکدے سب
4: تے
0: استعمال کرن دے بعد سب کو سب کچھ دس سکدے۔ بہت مہربانی عصمت بھائی، شکریہ نواز جی، اوکے جناب، تھینک یو سو ویری مچ جناب۔ اور آپ لوگوں کی کالز میں نے بہت ساری لے لی ہیں، اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ایس ایم ایس ہمارے پاس موجود ہیں تو ان ایس ایم ایس کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اور وائٹننگ کے لیے جناب آپ کو سیف وے جو ہے ہم آپ کو دیتے ہیں وہ کیسن کی کریمیں ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ دو کریمیں ہمارے چہرے کے لیے ہیں، ایک کیسن گلوٹا وائٹ کریم جیسے کہ ابھی عصمت بھائی کہہ رہے تھے، اور کہتے کہ

विटामिन सी, ये चार पांच चीजें जो है, साथ में हाइलुरोनिक एसिड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, हमारी क्रीम के अंदर। तो ये पांच चीजों से बनी हुई हमारी क्रीम्स होती हैं और आप तक जब पहुंचती हैं, तो ये सेफ अज्जा से बनी हुई क्रीमें हैं, सेफ इंग्रेडिएंट से बनी हुई क्रीमें हैं। और जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म का आपकी स्किन के ऊपर ना रैशेज ना इस किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना होगा। तो केसन की जो ग्लूटावाइट क्रीम है 350 रुपए की है, लेकिन इसके अंदर 25 से 30 ग्राम क्रीम होती है। ये ना देखा करें कि दूसरी कंपनियों की तो 300 रुपए की है, 280 की है, तो केसन की महंगी है। नहीं, मिकदार देखें इसके अंदर क्रीम है कितनी। इसके अंदर दो क्रीमों जितनी क्रीम है, यानी कि 350 रुपए की क्रीम है, लेकिन इसके अंदर 25 से 30 ग्राम क्रीम है जो आपकी डबल चलती है। ठीक है जनाब, इसी के साथ आप जोड़ी मिलाना चाहें, ठीक है जनाब, इसके साथ साथ जो है जाफरानी जोड़ी है, यानी कि जाफरानी क्रीम और जाफरानी साबन की जोड़ी है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से परफ्यूम की भी जोड़ी है, जाहरा एंड अकबर की जोड़ी है, दो परफ्यूम है, एक मेल और एक फीमेल के लिए है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से ग्लूटा वाइट की भी जोड़ी है, ठीक है जनाब। आप ग्लूटा क्रीम के साथ जोड़ी मिलाना चाहें तो आप चाहें तो ग्लूटा वाइट क्रीम के साथ फेस वॉश इस्तेमाल करें ग्लूटा का, चाहे तो आप ग्लूटा वाइट का साबन इस्तेमाल करें। तो केसर नेचुरल पाकिस्तान आपको जो ऑप्शन देती है ना वाइटनिंग के लिए, शायद ही वो किसी और कंपनी के पास हो, या कोई और कंपनी आपको इस तरह के इतने ढेर सारे ऑप्शन दे रही हो कि भाई ये भी चीज आपके लिए है, ये भी आपके लिए है, बस आप हिम्मत करें और इस्तेमाल करना शुरू करें। तो जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान के वाइटनिंग के लिए जो हमारी ऑथेंटिक और लीगल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि हमारी ग्लूटा वाइट क्रीम की फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमारी केसन नाइट क्रीम यानी कि जाफरानी फार्मूला क्रीम की फॉर्मुलेशन बहुत ही अमेजिंग है। और इनके साथ डिफरेंट किस्म के फेस वॉशेज हैं, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि जो खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, वो जरूरी तौर पर हमारा लवली फेस वॉश, जो कि हमने खास तौर पर फीमेल्स के लिए बनाया है, वुमेन्स के लिए बनाया है, इस फार्मूले को जरूर ट्राई करें। आपने आज तक मार्केट से जितने भी फेस वॉश खरीदे होंगे वो मर्दों वाले फेस वॉश हैं, ठीक है जनाब। आप किसी मर्तबा, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा केसन का लवली फेस वॉश, जो कि वुमेन फार्मूला है, पिंक ग्लो फार्मूला है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप नहीं छोड़ पाएंगे, आप कभी भी इस फेस वॉश को अपनी लाइफ में कभी भी स्विच नहीं करेंगे किसी और की तरफ। जब एक दफा आप केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, जो कि स्पेशल फार्मूला ऑफ व्हाइटनिंग एंड फेयरनेस है, वो आप इसे यूज करेंगे।

जनाब, आप लोगों के SMS को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और केसन की वाइटनिंग जो प्रोडक्ट है उनके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जनाब केसन कहानी है, केसन जो कहानी है वो खूबसूरती की कहानी है। और जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो जुल्फ और रुखसार की बात करते हैं।

जी जनाब, इस वक्त तीनों रेडियो स्टेशन डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम और टांग में रेडियो अमन से एक साथ आप सुन रहे हैं केसन का टी टाइम। और ये टी टाइम आप सुनते हैं रोजाना 4 से लेकर 5 बजे के दौरान। और बातें जो होती हैं, सारी की सारी बातें जो होती हैं वो खूबसूरती की होती हैं, वो सेहत की बातें होती हैं।

0: बस किसन जी जनाब, चार फेस वॉश, चार फिकर और चार कमाल, चार फिक्रों से आजाद कर।
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: प्रूफ है, आप इसको डेली मेकअप रूटीन में यूज कर सकते हैं। ये आज ही आप 14% डिस्काउंट ऑफर है, आज ही ऑर्डर करें, फ्री डिलीवरी एंड फ्री गिफ्ट के साथ है। ये 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ ऑर्डर करें। लाइफ ओपनिंग डेमो भी दिखाता हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम अंदर मौजूद है और आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा ब्रोचर होता है, इसमें आप इसको रीड भी कर सकते हैं, तमाम आइटम इसमें मौजूद होते हैं, ये भी आप इसके साथ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ एक बेस क्रीम है और एक इसके साथ इसका पंप आता है। इसको आप थोड़ा सा पानी से गीला करें और आप इसको इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसका मिरर भी आ जाता है और इसको आसानी से इसमें लगा होता है, इसको हटा के आप इसको यूज कर सकते हैं।

जी ग्रानु कदर मुनो और विदुन को दा बिल्कुल परमिन कॉस्मेटिक्स लाइव प्रोग्राम दा माता विले किसी आरजी तासीर और सो बिल्कुल दास पर खिदमत से हाजिर है कतासु हम च मसला भी मख पर हवाले सरा स्किन पर हवाले सरा या मसला मुही ब्यूटी पर हवाले सरा या मसला मुही विश्तानु पर हवाले सरा विश्तान मु वक्त मख्त स्पिन सो विश्तान मु स्पिन सारी स्लो स्पिन सारी खलेक अगर खलेक ची चटानी तूर और विश्तानी स्पिन दी जी बिल्कुल आगे खाले चिकु मुस परेशान दी हैरान दी कुर्बान मुस डिपार्टमेंट का आस्मेडिक्स पे दुनिया ची तासु विश्तान तुरा वलो आओ जी चिटान स्पिना वलो दिपारा बिल्कुल याउनो बल्कि बिशुमार

0: सिर्फ चोर अजब इस्तेमाल आओ 100% पर रिजल्ट आखिर मौजूद विदुन को डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स द प्रोडक्ट चिकन द बिल्कुल मौजूद दी हाजी जरबल खान साहब यानी मंसूर जन स्टोर सर मौजूद दी दिटक बाजार छी सदर प्लाजी छी अफसर खान मार्केट छी बिल्कुल मौजूद दी फरीदुल्ला सरा मौजूद दी
1: कॉस्मेटिक दुकान
0: आओ जी बिल्कुल फरीदुल्ला द्वारो दुकानों छी मौजूद दी दीन इलावा फरीदुल्ला ने इलावा नूर चीरत जेत मौजूद दी खुशू अरविदुन को दा प्रोग्राम छी कम दा लाइव बरारास चूंकि शुरी और राजी मलगिरी शवी छी भाई सदर प्लाजी छी अफसर खान मार्केट छी अफसर खान प्लाजी छी अलबदर मार्केट छी मौजूद दी दीन इलावा कदा छू गुल इमाम नयो गुल इमाम वालो आया आओ जी बिल्कुल
1: फल को खिदमत हम कवि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हर जगह मौजूद थी जरूरत दीदी खबर ही रखा चिलिश को निस्तर क्यों करो परमानेंट कॉस्मेटिक्स यानी दा कीमती प्रोडक्ट चिकम दी दा बता सुता बिल्कुल मिला उसे परमानेंट कॉस्मेटिक्स चिकम दी

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन. यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क.
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड.
0: 88.4 FM. वेलकम टू रेडियो अमन 88.4.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास. हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर. रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार. किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान. कमांडर डिश वॉश बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए. और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास. हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद. मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर. कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर. बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश. रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप. आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें. हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई. तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0313 91 27 273.
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
4: इलाजी सुनत अमल दे उसको तास्ता हर किस्म बीमारी भी नो मायूसी के गई माँ मायूसी गुनादा उस दख पुलु बीमारो ख औसही इलाज द पारा तशरीफ रोड़े शे सेहत होम्यो मेडिकल हस्पताल ता और होम्योपैथिक तरीके इलाज सरा पुलु बीमारो इलाज कवल शे. पता याद साते सेहत होम्यो मेडिकल हस्पताल जड़े डाखाने गलाए नूर मार्केट तंग बाजार जिले टांग.
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क.
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड.
0: 88.4 FM.
5: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4.

Oh, kesi hem hapisi Herman Drizik ne derisi senası. Afgan Drizik ne derisi hem hapisi Herman Drizik ne derisi senası. Afgan Drizik ne derisi. Yevusasa hal da vatan senga de yevusasa. Yevusasa hal da vatan senga de school ta mashuman Drizik ne derisi. Yevusasa hal da vatan senga de school ta mashuman Drizik ne derisi. ऐप महलुनु की वधु हाल को ऐप महलुनु की वधु हाल को सास की दबारान दर्जी कहने दर्जी ऐ माप से अरमान दर्जी कहने दर्जी सनस अफगान दर्जी कहने दर्जी ये उस सास हाल द वतन संग है ये उस सास हाल द वतन संग है दे स्कूल तो मशमान दर्जी कहने दर्जी ऐप महलुनु की वधु हाल को सास की दबारान दर्जी कहने दर्जी ایدہ پختانو کتلو یا کبر تا مارا اندرزی کنے درسی ماپسی ارمان درسی کنے درسی

मोहब्बत अगर वफा की होती तो कभी ना हारते बात, किस्मत की थी कुछ कर ना सके। भैया संग है टेंशन साबुन और हर्बल आयल और शैम्पू जिंदाबाद, फार्मूला खोर खो जमा जिंदाबाद से।